ये ऐसा दिन है वैलेंटाइंस डे का जहाँ पे आपके जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन ये जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे जहाँ पे पूरी दुनिया एक्चुअली आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में होड़ में होती है हर एक की, पोस्ट की कौन बढ़िया सी पोस्ट डालेगा सोशल मीडिया पे, शोइंग लव एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ 9 यर्ड्स दैट गो विद दिस वैलेंटाइंस डे. लेकिन विद दैट बीइंग सेड, फॉर ऑल दोज there's always people who are going to be loving whosoever they love all 365 or 366 days of a year depending on whether it's leap year or not. उनके लिए ये जो दिन होता है वैलेंटाइंस डे का, आई थिंक फॉर देम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग अपना लव प्यार जता रहे हैं, तो दे फील लिटिल काइंड ऑफ आउट ऑफ द वे, बिकॉज उनके लिए तो मतलब प्यार जताना इज़ प्रेटी मच एवरी डे वाला अफेयर होता है. तो विद दैट बीइंग सेड, आज के इस प्रोग्राम में जो पहला वाला गाना है, ये गाना हमारे हर वैलेंटाइन डे की रिक्वेस्ट में हमेशा आता है और ये गाना इतनी बार बजा है, लेकिन ये आज का स्पेशल गाना है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे. और जिन्होंने भी गाना रिक्वेस्ट किया है उनके नाम आपको बताएंगे गाने के बाद में, बट फॉर नाउ यू गो अहेड एंड लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग. This is kind of, anthem that plays pretty much on every Valentine's Day on Aapki Farmaish on Shuddh Desi Radio. Here you go.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का कार्यक्रम ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट आरजे एंडी। और इस गाने की रिक्वेस्ट जो है, जो मैंने बोला था आपको कि ये ऐसा गाना है जो हमारे आज तक की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो एवरी आपकी फरमाइश प्रोग्राम दैट वी डू अराउंड वैलेंटाइंस डे, दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सो मेनी पीपल। तो बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग केम टू अस फ्रॉम किरण बोयापति, संजना एंड किरण। सो थैंक यू गाइज फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। आपकी फरमाइश के गाने इस प्रोग्राम में चलेंगे। एंड एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम क्योंकि वैलेंटाइंस डे है आज। में जनरली होता ऐसे है कि इट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर वैलेंटाइंस डे के आसपास में हमारा शो होता है, बट आई थिंक टुडे यू आर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर शो ऑन द डे ऑफ वैलेंटाइंस डे, व्हिच इज सपोज टू बी द मोस्ट रोमांटिक डे ऑफ ऑल अदर 365 डेज। क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं कि इट इज वन ऑफ दोज डेज वेयर पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर लव। तो आप सुन रहे हैं इश्क वाला वैलेंटाइन का आपकी फरमाइश का प्रोग्राम, जहाँ हर धड़कन में है प्यार, हर शब्द में है एहसास और हर गाने में छुपी है किसी की अधूरी या पूरी मोहब्बत। तो आज का ये जो शो है आपकी फरमाइश का, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हम बजा रहे हैं, जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी का इंतज़ार करते हैं, या जो सिर्फ प्यार में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों विद दैट बींग सेड, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। सो फॉर ऑल दोज फोक्स हु आर लिसनिंग टू मी ऑन द एप और ऑन आवर रेडियो, यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट समथिंग रियल क्विक ऑन दिस डे ऑफ वैलेंटाइंस डे। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट आपकी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए। एज सुन एज वी गेट दैट रिक्वेस्ट, हम आपके लिए वो रिक्वेस्ट चलाएंगे। विथ दैट बीइंग सेड, अभी जा रहे हैं हमारे अगले गाने की तरफ। तो ये जो अगला गाना है, ये भी रिक्वेस्ट हमको आई है। आई थिंक दिस इज कमिंग टू अस फ्रॉम कोलंबस ओहायो। नाम आपको गाने के बाद में बताऊंगा, बट बिफोर आई गो ऑन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, आज है 14 फरवरी। हाँ, अभी एक महीने बाद, दैट इज ऑन 14th of March, शुद्ध देसी रेडियो हैज ऑर्गेनाइज दी होली एंड काइट फेस्टिवल। दिस इज अवर ट्रेडिशन दैट वी हैव बीन डूइंग दिस होली इवेंट फॉर आई थिंक लास्ट 6-7 years नाउ, एंड इट्स गोना बी एट द सेंटिनियल पार्क। थोड़ा सा लोकेशन, मतलब विद इन द पार्क इज गोना बी लिटिल डिफरेंट, बट दैट इज हैपनिंग ऑन 14th of March, सो डू नॉट मिस दैट। टिकट्स आर अवेलेबल राइट नाउ ऑन shuddesireadio.com, वहाँ पे जाके टिकट खरीदिए। एंड देन आई सी यू गाइज देयर ऑन एट दी होली एंड काइट फेस्टिवल, विच इज गोना बी अ फिनॉमिनल फिनॉमिनल थिंग एज इट हैज बीन फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स। विद दैट बींग सेड, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर। हियर यू गो। एंड देन फॉर दोज

तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी फरमाइश का प्रोग्राम। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी, और अभी जो हमने गाना चलाया था फ्रॉम मूवी तमाशा, अगर तुम साथ हो, संग ब्यूटिफुली बाय अरिजीत सिंह एंड अलका याग्निक। और गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है अंकिता और अरविंद की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। दिस इज कमिंग फ्रॉम कोलंबस ओहायो गाइस, सो थैंक यू वेरी मच अरविंद एंड अंकिता फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। एज आई एम टेलिंग यू, वी आर यू नो, व्हेन वी प्ले दिस आपकी फरमाइश प्रोग्राम या हमारा जो दूसरा होता है दिल से देसी, वी हैव सो मेनी लिसनर्स दैट लिसन टू अस लाइव, एंड देन देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स दैट वी रन थ्रू आउट द डे। तो आज के इस प्रोग्राम में जो बढ़िया से बढ़िया गाने आए हैं, आई एम सो हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू। अगला वाला जो गाना है दैट इज़ किसी की एक्चुअली जीवन कहानी का एक कुछ हिस्सा है, और उसके साथ में दे हैव सेंट अस देयर लिटिल यू नो इनसाइट टू देयर लव स्टोरी। तो उनकी मुलाकात कुछ कॉफ़ी शॉप में हुई थी, कुछ पहली नज़र। तो जैसे बोलते हैं ना, दो अजनबी गलती से टकराना, फिर मुस्कुराहट, और इसमें ऐसे हुआ कि उनका नंबर तो हरे ने लिया ही नहीं, तो फिर दूसरी दिन उसी टाइम उसी शॉप में जाना और फिर उनसे मुलाकात होना, और उस टाइम में उन्होंने उनका नंबर लिया, मतलब एक दूसरे ने नंबर लिया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे हैव बीन इन touch, and that basically their friendship, their love actually was you know they got married on 14th of February as well. So with that being said, ये जो गाना है, गाने की रिक्वेस्ट किसने भेजी है और ये किसकी स्टोरी थी, ये मैं आपको बताऊंगा गाने के बाद में। But before that, let me play this song. It's a very very बढ़िया सा song है, and you take a listen, here you go. And for all those folks who are joining me here on our Shuddh Desi Radio's Facebook Live, if you are watching this right now, and if you want to send us your aapki farmaish agar hamare radio mein chalni hai, to aap kya kar sakte hain, hamare app mein jaiye, and there is a feature play request a song wala. So you can actually request a song from there and try to mention, you know, where you are sending that request from, because wo badhiya rehta hai ki, you know, jaise India mein hum log sunte the wo program, aaj tak Jhumri Talaiya se humko koi request nahi aayi hai, but there have been, you know, so many places that we get requests, jo jaise maine aapko pehle bataya tha ki ye is gaane ke pehle mein jo chalaya tha, that came from Columbus, Ohio. So with that being said, I'm going to go ahead and play this particular song for you. बढ़िया सी प्रेम कहानी की है, और take a listen, here you go.

दोस्तों, तो ये अभी जो गाना आपने सुना, पहला नशा पहला खुमार, ये रिक्वेस्ट हमको भेजी है प्रतीक और गिव मी वन सेकंड, प्रतीक और सोनाली ने. दिस इज देयर लव स्टोरी का ये सॉन्ग था जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको. तो यू गाइस, यू नो, आई थिंक आपने हमारे साथ में आपकी स्टोरी शेयर की, जैसे जहां वो यू नो कॉफी शॉप में शुरू हुई एंड इट कल्मिनेटेड इनटू बोथ ऑफ यू गेटिंग मैरिड. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू गेटिंग मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे. दैट इज डेफिनेटली फिनोमिनल. वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स. दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी और आज के इस प्रोग्राम में जैसे हम गाने चला रहे हैं जो आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हैं, तो send your request. I actually have few requests that came in just now. तो अगर इस वैलेंटाइंस डे पर आप किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, कोई पुराना प्यार, कोई अधूरी मोहब्बत, या फिर वो जो आज भी दिल के सबसे करीब है, दिस इज द मोमेंट गाइज फॉर यू टू सेंड इट. ऐसे देख वैसे देखा जाए तो यू नो हर वैलेंटाइन पर फूल या चॉकलेट या गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी एक ऑनेस्ट सा मैं हूं ना, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर लव पार्टनर और योर लव और योर वैलेंटाइन. विद दैट बींग सेड, लेट्स प्ले दिस फिनोमिनल रिक्वेस्ट दैट केम इन. गाना जो है वो है अराउंड 60s का, बट आज भी उतना ही मधुर है और उतने ही उसमें जो जज्बात है. यू कैन लिसन टू द सॉन्ग एंड टेल अस How you like this song. गाने के बाद में बताएंगे गाने की रिक्वेस्ट कहाँ से आई है. Here you go.

दोस्तों, ये संगम मूवी का गाना था 1964 वाला, लेकिन यहाँ पे तो जिक्र हो रहा है प्रेम पत्र का। और आज के ज़माने में आई एम नॉट श्योर कोई किसी को पत्र यानी कि लेटर भी लिखता होगा। आई जस्ट हर्ड सम टाइम, यू नो, आई थिंक लास्ट वीक और उसके पहले में, कि इंडिया में वो जो लाल कलर के पोस्ट के डिब्बे होते थे, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली मेल योर लेटर या पोस्ट कर सकते थे, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ डिसीशन, आई थिंक टेकन बाय इंडियन पोस्टल सर्विस, दैट दे आर गोना रिमूव ऑल दीज, यू नो, रेड डब्बे जो थे। ये उस जमाने की बात है जहाँ पे पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, चाहे वो प्यार के खत हो या कुछ, यू नो, अपनी फैमिली के साथ में कुछ, यू नो, बातें हो। दैट यूज टू बी इन दोज डेज ऑन लेटर्स। आई थिंक इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल दिस जेन जी हियर, आई थिंक दे विल प्रोबेबली नॉट इवन, यू नो, फैदम द आइडिया ऑफ समवन एक्चुअली राइटिंग फॉर, यू नो, मे बी 2 or 3 pages और वट एवर, एंड देन मेलिंग इट, एंड इट वुड टेक मे बी, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर मेलिंग इट, वेयर टू दे आर मेलिंग इट टू, इट वुड टेक मे बी 1 week to 3 or 4 weeks टू गेट दैट लेटर। एंड जिसको भी लेटर मिलेगा, वो खत मिलेगा, दे विल राइट अ रिस्पॉन्स, एंड दैट दैट विल टेक अनदर 4 weeks। वो उस जमाने की बात है, जेन जी को समझाना काफ़ी काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो रिक्वेस्ट आई थी, वो आई थी समीर देशपांडे की तरफ से। समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। उस जमाने में लेके गए आप हमको, जहाँ पे जो प्यार का इजहार या प्यार की जो बातें होती थी वो खतों के जरिए होती थी। उस जमाने में फोन भी इतना कॉमन नहीं था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग। बट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगेन टुडे इज 14th of February, वैलेंटाइंस डे। अ मंथ फ्रॉम नाउ यू गोना हैव अनदर चांस टू enjoy the Holi and Kite Festival organized by Shuddh Desi Radio. This has been a tradition of Shuddh Desi Radio to bring all the Desi community and all the local community together. और आपको अगर ये मौका चाहिए कि यू नो, आज है 14th of February, अ मंथ फ्रॉम नाउ इट इज़ ऑन 14th of May, यू शुड कम टू होली एंड काइट फेस्टिवल एंड एन्जॉय इट विथ योर लव्ड वंस, एंड वी विल बी ग्लैड टू, यू नो, होस्ट यू आउट देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन shuddhdesiradio.com। विद दैट बीइंग सेड, मैं अभी जो अगला

दोस्तों वेलकम बैक टू दिस फिनोमिनल एपिसोड ऑफ आपकी फरमाइश ब्रॉट टू यू ऑन वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे स्पेशल आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. एंड दिस बेसिकली ये जो अभी जो सॉन्ग था दैट एक्चुअली केम टू अस फ्रॉम भरत. And Bharat actually, sorry about that guys, this actually came to us from Bharat. Thank you Bharat for sending that request to us. Now let's talk about ye Valentine's Day ka jo special, you know, itna abhi

that has, with social media, it's definitely grown to a event or a day wherein a lot of retailers actually are banking on, you know, a lot of sell on this day, whether it is roses, whether it is chocolates, whether it is any kind of gifts, teddies, you know, you name it. It's pretty much all the storefronts actually have it. Or ye jo Valentine's Day ka jo stocking chalu hota hai store mein, that's about 4-6 weeks before even the Valentine's Day actually occurs. So around, you know, as soon as New Year's is done, I think, you know, all the retailers are planning to stock their stores with the merchandise for Valentine's Day. Go to any of these you know, storefronts, that's what you are going to find. तो एक मेरी याद है, जब हम लोग पुणे में थे, आई रिमेम्बर अगेन, यू नो, ग्रीटिंग कार्ड्स यूज्ड टू बी अ बिग थिंग ऑन एट दैट टाइम. अगेन पीपल वुड, यू नो, गिव ग्रीटिंग कार्ड टू देयर लव्ड वंस ऑन वैलेंटाइंस डे एटसेट्रा. बट दैट टाइम, टॉकिंग अबाउट 90s की बात कर रहा हूँ, सो देयर यूज्ड टू बी अ बिग, यू नो, अ बिग पॉलिटिकल पार्टी देयर. एक्चुअली द लीडर ऑफ इट वॉज कम्प्लीटली अपोज इन ब्रिंगिंग दिस वेस्टर्न कल्चर इन टू इंडिया. और उस टाइम में बहुत, मतलब कॉलेजेस में एंड ऑल दैट, ऑल द किड्स, मतलब लड़के लड़कियाँ, वो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए देखते थे. बट विद दिस you know, development of the political parties and all the student unions getting involved into it, bahut sare colleges mein this was, ye aise chup chup ke manaya jata tha. At least मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, जहाँ पे ये ऐसे कुछ होता था. दे वर कम्प्लीटली अपोज टू सेलिब्रेटिंग दीज वेस्टर्न कल्चर, ब्रिंगिंग दैट वेस्टर्न कल्चर एट्सेट्रा. बट आई हैव हर्ड नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज, और इतनी बदल गई है कि वहाँ पे आई थिंक वट एवर दैट पोलिटिकल पार्टी दैट वॉज देयर, that's probably gone, that's probably wiped out in all the elections and all that. And all the Gen Z and all the generation there, they are big into celebrating Valentine's Day. They have kind of, you know, adopted that whole Western culture back in India. So, jaise bolte hain na, kabhi kaha hi nahi tujhse, par har dua mein tera naam likha hai. वो पूछते हैं हम क्यों खामोश रहते हैं, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि हमने दिल उन्हीं के नाम कर रखा है. दोस्तों, विद दैट लेट्स टेक अ लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग, हियर यू गो. अगर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और आपको किसी को डेडिकेट करना है आज के इस स्पेशल अवसर पर, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस info@desireadio.com. हियर यू गो.

209 की गाने की रिक्वेस्ट और दिस ऑन द स्पेशल वैलेंटाइंस डे आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. कुछ चंद ही मिनट बचे हैं, अराउंड 10 मिनट्स. सो इफ़ यू स्टिल वांट टू गेट योर रिक्वेस्ट इन, यू स्टिल हैव गुड यू नो चांस दैट योर सॉन्ग विल प्ले ऑन दिस एपिसोड. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यू नो हाउ एवरीवन इज इन द मूड फॉर सेलिब्रेटिंग दी वैलेंटाइंस डे. स्टोर फ्रंट की बात की हमने, ऑफ कोर्स जेन जी इज देयर, एंड देन यू नो इन दी वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन वांट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो विद दैट बीइंग सेड, किसी ने एक गाना भेजा है. दिस इज़ फ्रॉम दी 80s और बढ़िया सा गाना है. सो लेट्स टेक अ लिसन टू दैट सॉन्ग राइट हियर. ओ हियर यू गो विद दैट सॉन्ग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. जो 80s वाला जो सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे से बोल है उस गाने के. और गाने की रिक्वेस्ट हमको किसने भेजी है वो तो आपको पता है, हम लोग गाने के बाद में बताते हैं. सो हियर यू गो.

ऑल राइट दोस्तों, ये गाना जो था दैट एक्चुअली वाज फ्रॉम मूवी याराना। गाने की रिक्वेस्ट आई है संजीव की तरफ से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये प्रोग्राम इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, और एक गाना शायद बच सकता है अभी, तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। बट बिफोर दैट, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू फॉर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार हमारे तरफ जो है, यू कीप ऑन शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव टू अस। दैट्स अ रियल यू नो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर अस। विद दैट बींग सेड, फॉर ऑल दोज फोक्स who don't have a Valentine, or who are actually in the process of making one of their friends or someone as their Valentines, उनके लिए एक बढ़िया सा गाना। With all that being said, I'm signing off from the studios of Shuddeshi Radio, and keep listening to one of the best radios that you can actually find in the continental US and all over the world, actually. So here you go. Badhiya sa gana. Take a listen. So with that being said, I just wanted to once again wish you all a very, very happy Valentine's Day. रात चुप है, चांद भी खामोश है, बस एक तू है जो ख्यालों में हर वक्त मौजूद है। वेल, एज गैरिसन किलर सेज, डू गुड वर्क, स्टे हैप्पी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, डू गुड वर्क।

0: Today I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: द देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
2: चलो आज पिक्चर देखते हैं।
3: नहीं नहीं पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
2: नहीं
3: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
2: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
3: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार लगते।
2: बेकार तो तुम लगते हो।

सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज की।

tuned into Shuddha Desi Radio, the only Bollywood radio station in Southeast. सुविचार, एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: लाइक एंड फॉलो अवर एफपी पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक।
1: माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: तो दोस्तों, आप I-65 पे हो या I-40 पे हो या फिर I-440 हो या फिर I-24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।

I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक. शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू.

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: विचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: शुद्ध देसी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
2: I'm your host Anirudh. Keep listening to your own Shuddh Desi Radio.

सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सौदागर हैं। यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one Bollywood रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब। You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio, देश से दूर पर दिल के करीब।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
2: शुद्ध

0: देसी रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो। इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स। सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com। इट इज info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच।

हेलो म्यूजिक सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज। और दोस्तों, अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO, जो कि हमारे रेडियो का नाम है।

के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान. सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल डाउनलोड द ऐप. वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं. एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज, सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड अस रिक्वेस्ट.

क्या जादू चलाया तुमको,

आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

शब्द देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: ऑफ शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: Hey, all those business owners over there, if you guys want to promote your business or if you want to promote any event, you can use Shuddh Desi Radio for your promotion, and you can reach us at info@shuddhdesiradio.com and we will be glad to promote your business. Grow with us. Shuddh Desi Radio, aapka apna radio.
1: Hello, Naiswell. अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक. दोस्तों, आप अपनी फरमाइश के गाने हमें भेजते रहिए. आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ बहुत ही बढ़िया गानों की, जिन्हें कि हम लेके आ रहे हैं अपने सैटरडे के प्रोग्राम में. तो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड देन वी विल डेफिनेटली प्ले देम फॉर यू.

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज।

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।

0: मैंने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: तो दोस्तों, आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड में आपकी फरमाइश का कार्यक्रम। तो आपकी फरमाइश भेजना अब बहुत ही आसान हो गया है। बोलो कैसे? यू कैन डाउनलोड आवर iOS ऐप और उसमें एक फीचर है रिक्वेस्ट सॉन्ग, जहाँ पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड वी विल ट्राई टू प्ले दैट ऑन आवर आपकी फरमाइश शो। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो। शुद्ध, शुद्ध।

0: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddhdesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक.
1: सुन रहे हैं मिडिल देसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: देते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
2: तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

पॉडकास्ट विचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: तेरी बातें मेरे जहन में घूमती हैं, इस कदर तेरी बातें मेरी जहन में घूमती हैं जैसे तेरी बातों का रेडियो सुन रही हूँ। जी हाँ, आवाज की दुनिया के चाहने वालों, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: सुन रहे हैं मिडिल टालिसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मिडिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

आज सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। देश से दूर पर दिल के करीब।

सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: शुद्ध देसी रेडियो की टीम आपके लिए लेके आएगी बॉलीवुड के हर जमाने के सॉन्ग, पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक, गजल से लेके न्यू हिट्स तक, और वो भी नैशविल कैरेक्टर, नैशविल फ्लेवर के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन हो या रात, वीकेंड हो या वीकडे, आप ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हो या घर के काम में बिजी हो, हमारा रेडियो स्टेशन आपके साथ होगा हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड।
2: जैसे दूर हो तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए।

0: रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन
1: साउथ। एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर, इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold

पाकिस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं
2: मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, only on your own.
1: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se door, par dil ke kareeb.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप इट।

रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, दी ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।
1: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

सौदागर हैं। जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

करता हूँ काबू। जाग जा तू।

आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: आओ, हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।
1: अरे आज का खाना सासू माँ ने बनाया क्या?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: अरे हर बार तो खाने में काला बाल निकलता है, आज ग्रे बाल निकला है।

0: दोस्तों डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू.
1: तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए.
2: वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

0: आओ। हेलो नेशल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ
1: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

अपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: और अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।
1: आई एम गोइंग टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट, बट यू ऑल्सो अट्रैक्ट वॉट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो वॉच वॉट यू थिंक।

0: शाम का समय और ट्रैफिक की अहकार से परेशान नहीं होने का चक्का जाम में हम सुनाएंगे आपको धमाकेदार बॉलीवुड के गाने फ्रॉम 5 to 7 PM सेंट्रल टाइम जोन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी
1: रेडियो। कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध।

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: अपनी फरमाइश के गाने हमें भेजते रहिए। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ बहुत ही बढ़िया गानों की, जिन्हें कि हम लेके आ रहे हैं अपने सैटरडे के प्रोग्राम में। तो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड देन वी विल डेफिनेटली प्ले देम।
1: सामने वाले ने, किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप, किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी, एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: तो दोस्तों आप I-65 पे हो या I-40 पे हो या फिर I-440 हो या फिर I-24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.

0: आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesiradio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.
1: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se door, par dil ke kareeb.

आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए। अगर सामने वाले ने, किसी ने कोई गलती कर दी, तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप, किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी, एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

बम्पर टू बम्पर शो में हम सुनाएंगे आपको सुपर से भी ऊपर वाले गाने टू मेक योर मॉर्निंग रिफ्रेशिंग। तो सुनते रहिए हमारा बम्पर टू बम्पर प्रोग्राम फ्रॉम 7 AM टू 9 AM सेंट्रल टाइम जोन ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: तो चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
2: यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। यू हैव गॉट टू पे अटेंशन टू व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू, बिकॉज एज यू होल्ड इमेजेस ऑफ व्हाट यू वांट, यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू यू। बट इट लिटरली मूव्स इनटू फिजिकल रियलिटी विद एंड थ्रू यू, एंड इट डज दैट बाय लॉ, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
3: Oh my God, this is original.

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आई वांट टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट बट यू आल्सो अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो वॉच व्हाट यू थिंक।

0: सौदागर है जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी?
1: शेयर अ ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट। You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think. You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल।
1: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: अपने दिन की शुरुआत करिए हमारे साथ शुद्ध देसी रेडियो पे सुबह 5 से 7 बजे तक हमारे भक्ति संगीत कार्यक्रम में, और हमारे साथ भक्तिमय हो जाइए।
1: और उसके बाद चालू होती है दिन की भागम भाग, यानी कि आप ऑफिस जा रहे हो या बच्चों को तैयार कर रहे हो या कुछ पका रहे हो, तो उसमें आप सुन सकते हैं हमारा बम्पर टू बम्पर प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए ऐसे गाने लेके आते हैं जो आपको दिन भर आपका टेम्पो बनाए रखे। तो सुनते रहिए
0: शुद्ध देसी रेडियो सुबह 5 से 7 बजे तक भक्ति संगीत कार्यक्रम, और 7 बजे से 9 बजे तक बम्पर टू बम्पर, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

0: और ट्रैफिक की हाहाकार से परेशान नहीं होने का। चक्का जाम में हम सुनाएंगे आपको धमाकेदार बॉलीवुड के गाने फ्रॉम 5 to 7 PM सेंट्रल टाइम जोन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी
1: रेडियो। शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।

आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब। यू आर लिसनिंग टू अमेरिका'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, देश से दूर पर दिल के करीब। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: अच्छा है, जैसे दूर हो तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो. अच्छा है, सुनते रहे.

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज।

चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। Where focus goes, energy flows, and where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

0: advertise your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and yes, it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com and we will get in touch with you.
1: सुविचार, एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.
1: सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: पाकिस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।
1: होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग शुद्ध देसी रेडियो।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
3: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट। लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर। ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक फन।
0: हेलो नैशविल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि अब आ गया है मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

डेल्टा लेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH space DESI space RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप।

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूं।
2: आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध।

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: सौदागर हैं यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one Bollywood radio station, देश से दूर पर दिल के करीब। You are listening to America's number one Bollywood radio station, शुद्ध देसी रेडियो, देश से दूर पर दिल के करीब।

सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

0: तो आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड में आपकी फरमाइश का कार्यक्रम, तो आपकी फरमाइश भेजना अब बहुत ही आसान हो गया है। बोलो कैसे? यू कैन डाउनलोड आवर iOS ऐप और उसमें एक फीचर है रिक्वेस्ट सॉन्ग, जहाँ पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड वी विल ट्राई टू प्ले दैट ऑन आवर आपकी फरमाइश शो। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज

नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com. It is info@shuddhdesiradio.com. And we will get in touch
1: with you. आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: रफ्तार सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके।

0: मंटो एक इंसान है।
1: जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है, राजनीति

0: से डूब जाएगा।
1: मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मंटो एक इंसान।
0: मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनू करे मेरा मन तो। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं बिकता।
1: अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: फ्रेंड्स, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम? हमें बताते रहिए, प्लीज पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए आपके विचार, आपके लाइकिंग, एंड डू लेट अस नो हाउ वी डूइंग सो दैट वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस टू अडैप्ट टू योर लाइकिंग.
1: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना. अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है. तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी. और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो.

देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, the only Bollywood रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।
1: देश से दूर हो तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

0: अरे आज का खाना सासू माँ ने बनाया क्या?
1: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
0: अरे हर बार तो खाने में काला बाल निकलता है, आज ग्रे बाल निकला है।
2: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।